लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना है। ए गल क्यों कही, आओ इस बारे

सेवक बन गए। पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग

असी बैठे आ, खादा भी कुछ नहीं, खान नु रहा भी कुछ नहीं। औरंगजेब मुसलमान है, उसने कुरान शरीफ दी कसम खादी। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खादी है, ये साडे ते हमला नहीं करनगे। पर गुरु साहब ने कहा, इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साडे ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां, कुछ दिन बीते, भाई मान सिंह इसने बेनती की थी, महाराज पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहिबां ने कहा, मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे कोल आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख के आ।

एक कागज लो। उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नु प्यारी समझे, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नु छड़ के अपने घरां नु तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़ता है।

अपने घरां नूं पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहिबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के

सिख ने। ए गल करां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे? पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना, ओ जीवना है। एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी, साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे। अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड़ के आए हो, मौत तू बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो, इस साड़ियां चुनियां ले लो, पग्गां ला दे, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दितियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कसे खोल के सानू दे, कमर कसे करके असी जावांगियां।

मिया खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता सिखी छड़ दिती पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है सिर झुका के जीवना को जीवना है। धर्म वास्ते मरना धर्म दे राह ते चल के मरना देश कौम दी सेवा

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबा ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमा तोड़ दितिया, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमा तोड़ दितिया। गुरु साहबा के काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी

जिथे वड्डे साहबजादे शहीद होए उथों तुरे माछीवाड़े आए, माछीवाड़े तो चले कई जगह हुंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगतां गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां ओही रौनकां फिर लग गईयां पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सुपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं महाराज मेरे चारों साहबजादे किथे ने ता गुरु साहिबां ने कहा सी तुहाडे चार पुत्र उन्हां सारियां तों वार दित्ते ने जेड़े जिउंदे ने जिन्हां हाली जिउणा है तुहाडे साहबजादियां ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के समा बीतिया गुरु साहिब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे साहिबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है तां गुरु साहिबां ने कपूरे नूं कहा कपूरिया साडे पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहे है तू अपना किला दे तां कि इत्थे असी उहदे नाल दो हथ कर लईए कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है पर औखा समा देखिया तां इह वी मूंह फेर गया कहन लगा महाराज मुगलां दा राज है मैनूं मुगलां कोलों डर लगदा है जे तुहानूं किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने वजीर मैनू खत्म कर देवेगा बादशाह मैनू सजा देवेगा ता गुरु साहिबां ने कहा जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं अज भी एहो जे लोग आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने सिखी छड्डदे ने अमृत तों दूर ने पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं अपने गुरु दे उपदेश ते नहीं चलदे दुनिया दे सुखां अगे सिर झुकांदे ने सच जानना उन्हां दा जीवना कुछ एहो जिहा जीवना है जिवें साहिब जी कहिंदे ने जे जीवे पत लथी जाए

भाई मां सिंह दा प्यार देखिया ते गुरु साहिबा दी अखां विच अथरू आ गए। अथरू किरे भाई मां सिंह दी गल्लां ते जा पए, मुंह विच पानी पाया। भाई मां सिंह ने अखां खोलिया, अखां दे विच कलगी दी लिशक पई, हाथ जुड़े ते गुरु साहिब जी बेबल होए। भाई मां सिंह नूं छाती नाल लाया ते कहंदे ने बेटा मैं आ गया, मंग की चाहिदा, अज जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। भाई मां सिंह हाथ जोड़े हुए ने, पातशाह टूटी गंढ लै, ओ जेड़ा कागज ओ बेदावा जिदे ते लिखे तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, ओ बेदावा पाड़ दे, टुट्टियां नू मेल लै, अपने चरणा विच जगह दे दे। गुरु साहिबा ने ओ कागज हाल भी संभाल के रखिया, कागज कढ़े ओ बेदावा भाई मां सिंह ने दिखाया। ओ कागज उस वेले फाड़िया, टुकड़े हवा विच उड़ा दिते, बेदावा पाटिया। भाई मां सिंह ने शुक्र किया, अज सुरखरू हो गया, गुरु ने बख्श दिता। हुण गुरु साहिबा ने कहा मां सिया पंथ वास्ते ते बहुत कुछ ले लिया, कुछ अपने वास्ते मांग, कहें ता जिंदगी दे दें, राज दे दें, अज जो मंगेगा तैनू मिलेगा। पर तन है जे गुरु ते सिख भी घट ने। भाई मां सिंह कहंदे ने पातशाह कुछ नहीं चाहिदा, तेरी गोद विच जान निकल जाए होर मैनू की चाहिदा।

उस जगह ते नाले वर दिता। इस जगह दा ना हुण मुकत सर होवेगा। जेड़ा इथे आएगा प्यार शरदा नाल ओ मुक्ति नू प्राप्त होवेगा। ओ जो मंगेगा उस नू प्राप्त होवेगा। अज जदू भी कोई मुकत सर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मत्था टेकदा है, ओ इन्हां शहीदां नू भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले जाना वारियां, जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नू सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती ते सानू राह दस्या। ऐ भाई जेड़ा सिखी गवा के पत्त धो के जिउंदा है ओदा जीवना

दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आ जा।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार, सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार, सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे सिंध संसार, चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बंगेकार, एक होंदा ठाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार, जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार, कोई जी आखे

मथे टिका देड़ धोती गखाई हाथ छुरी जगत का साई नील बसर पैर होवे प्रवान मलेश तहले पूजे पुराण

भैल। आसर तिर जे नाव है उतरे ना ही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार, तिन नेह लगा रब सेती देखना विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बात सचे ना। दरवाज प्रसन्न मुंडा जबे दे ता खाहे दीवाने को कलमे का, हम तुम्हें दर ले लिखा पीर छुटे नानका, ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों, कर आप ही तय धारिये देख ही तय अपना, तर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन, सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण।

चलो पहला दूजा एक नहीं आशकी दूजा लगे जाए नानक आश काटिए सगिरे समाए तुम्हें जगह कर मन मते मंदा हो आश तू ए ना किए जे लिखे वरते सोए नानक दोवें कुड़ियां आए ना पाई आए मोड़ी सिरा सुपाइए सो साहिब सदा संभालिए साकाल बुरी क्यों गालिए दिल में नगर में हालिए जो साहिब नाल हारिए।

लोगन से मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल से मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लै के उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी प्रवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी प्रवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

सब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

बहुत अनंत लाटू मधानियां गा पंखी पौंदियां लै नसा सुए चाड़ पवाईया है जंत नानक पौंदियां गणतनंत बंधन बंद पुहाए सो पै किरत नचै सब कोय नच नच हसें चल।

लख सुरती लग्यान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया उन जान नानक मति मिथ्या करम सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहवे गुरु।

अलमल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पतगवाई बिना ए किठाए ना पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नगर करे सो पाए आस ले से ते

जूठे जूठे मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे ना आखी है बैंड पिंडा तो सूचे से नानकार जिन मन बसे असोए पौड़ी तुरे पलाने कौन वे हर रंगी हर सवार दूसरे मन मारिए लाए बैठे कर पसारे आजी कदम दे हर पुजन नाई हारे आकर प्रकाश आया विख महल मरण सारे।

0: राजू बाबा ऐ पड़े सन मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नु आंदी है
1: हाँ सुन हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफे पान का हुक्म दिता ते प्रहलाद के दिल विचों आवाज आई पाल तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु रम रख लो प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी विंगा ना होया गुस्से विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया
0: मैं भी प्रहलाद बनाऊंगी मां भगवान दा जाप करांगी
2: मेरी मेहनत मेरी और आप पुठे पार पड़े जा रहे आज तो बात फिर करी ऐसी घर की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हेरना की शमन भी पड़ जाएंगे

चांदा ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसे चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है, कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए। पर किवें?

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा? शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

गुणवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है, भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टूटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

मन की इच्छ पुजाई। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे पाई, जिस परमात्मा ने जिस प्रभु ने हर वेले हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है, सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।